जी हाँ, ये ओपनिंग कलाम था सदाकत साबरी साहब की आवाज़ में, और ये बेहतरीन कवाल है इंडिया की माशाल्लाह। तो दुआ करें कि जल्द से जल्द केप टाउन आ जाए और हम इन्हें लाइव देखें माशाल्लाह। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, मैं गुनहगार हूँ

जी हाँ, अल्लाह का फरमान है, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। मैसेज आया है हमारे हर हफ्ते के जो आर्डेंट लिसनर्स हैं, असलम साहब और रुखशान आपा की तरफ से, जो कहती हैं स्पेशल ग्रीटिंग्स टू खैरुनिसा चोगले, इंजॉइंग सफिया'स चॉइसेस सिलेक्शंस अल्हम्दुलिल्लाह, एंड लव एंड दुआस फ्रॉम रुखशान एंड असलम, नॉट फॉरगेटिंग सफिया'स ऑल लिसनर्स एंड ऑल टेक्निकल स्टाफ, एंड आमीन टू ऑल सफिया'स ब्यूटिफुल दुआस। और फिर हमारी प्यारी बहन वहीदा कह रही है अस्सलाम वालेकुम एंड ट्यून्ड एट वर्क लिसनिंग टू द सोलफुल साउंड्स ऑफ कव्वाली, जज़ाकल्लाह खैर। अगला कलाम है, या रब तेरी रहमत।

बेशक ये हमारे से थोड़ी गलती हुई, हमने ट्रैक पहले प्ले किया। क्यों रोता है उसके लिए जो कभी तेरा था ही नहीं। जी हाँ, काफ़ी लोग हमसे दूर चले गए हैं, हमारे अपने जैसे अब्दुल लतीफ़ साहब और हमारे इस पा के दूसरे अब्दुल इस्माइल साहब, तो अल्लाह ताला इनकी मगफिरत करें, इनको आला दर्जात दे जन्नत का। अगला कलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर।

जी हाँ, एक थी खूबसूरत गजल जगजीत सिंह साहब की आवाज में, जो कह रहे हैं हाथ छूटे लेकिन रिश्तों को ना छोड़ना। और यही मैं कहना चाह रही हूँ कि मैं तीन हफ्ते, मेरे प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम आप सुनेंगे, मैं तीन हफ्ते आपके साथ नहीं रहूँगी, लेकिन आप मेरी दुआओं में रहेंगे इंशाल्लाह, और मैं भी आपके लिए दुआ करूँगी। इससे पहले मैसेज आया है, मैसेज गोज आउट टू अमान पाकर हु सेलिब्रेटिंग 78th बर्थडे टुडे, मे ही बी ब्लेस्ड विद मेनी मोर टू कम। दिस कम्स फ्रॉम भटकर दाऊद एंड फैमिली, अहमद अजीज़ा एंड चिल्ड्रन, बाउंड्री रोड, क्रेवन बी स्ट्रीट। जजाकला है। और बर्थडे मैसेज है 11 जुलाई के लिए शडली के लिए, हमारे अपने डॉक्टर रफ़ीक अब्बास जिनकी आज सालगिरह है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो इलाज किए थे बहुत सारे पेशेंट्स कोविड के वक्त। और एनिवर्सरी ग्रीटिंग्स मरियम और कासिम के लिए 15 जुलाई के लिए, तो अल्लाह ताला इनकी भी तमाम दिली मुराद पूरी करें, इनको खुश रखें, लंबी उम्र सेहत तंदुरुस्ती दें। और ये आता है दलवी अब्बास जेफरीज एंड एक्सटेंडेड फैमिलीज की तरफ से। अगला कलाम है अपने रंग में रंग दें।